ॐ स्वस्तिस्तु ॐ अविक नमस्तु नमसिदम ॐ सिद्धिरस्तु तत् अस्तु या नमः स्वाहा।